सुप्रभात, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम पे 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक्रम्बत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 3, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: संत कबीर कहे जाते, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सदगुरु प्राप्त करब कतेक दुष्कर अछि, ई एहि कथन सँ स्पष्ट। गुरु तखने प्राप्त भ सकै छथि जखन कि मनुष्य अहंकेर त्याग कऽ दिया। शीश दिए कहबा सँ महात्मा कबीरक यह अभिप्राय छनि जे शिष्यकेँ गुरुक प्रति पूर्ण समर्पण भाव हेबाक चाही, तखनहि शिष्य गुरु सँ किछु प्राप्त कऽ सकै छथि। एकठा आर संत कबीर कहै छथि, जब मैं था तब गुरु नहीं, गुरु है तो हम नाही, प्रेम गली अतिसा करी या मैं दो न समाही। जावत स्व अथवा अहंकेर परित्याग नहीं कौ देल जाय छ, ताबत गुरुक कथन में शंका वा संदेहक पूर्ण संभावना बनल रहै छ। श्रवणेन्द्रिय द्वारा ओ ग्रहण त कैल जाय छ, किंतु मनः पटल पर ओ स्थायी नहीं भ सकै छ। गुरुक कथनक प्रति अस्ति नास्तिक द्वंद्व मन में बनले रहै छ। एहना स्थिति में शिष्यक श्रम त व्यर्थ होइत ही अछि, गुरुक प्रयास सेहो पानि में चल जाय छ। तैं शिक्षणक प्राचीन पद्धति में गुरुकें सर्वोच्च स्थान देल जाय छल आ हुनका सब किछु बुझबाक प्रशिक्षण आरंभे सँ शिक्षार्थी के देल जाय छल। तत्वान्वेषी के तो स्व केर त्याग करब परमावश्यक अछि, कारण तत्व चिंतनक प्रक्रियाक आरंभे स्व वा अहं केर त्याग सँ होइ छ। क्यों सिद्ध पुरुष छलाह, हुनका संग में पारस पाथर रहन। पारस पाथरक संस्पर्श सँ कुधातु स्वर्ण में बदल जाय छ। पारस पाथर ओ नुका कर रखथि, ककरो ज्ञात नहीं रहेक जे हिनका संग में पारस छैन, शिष्यो लोकन के नहीं बुझल रहन। कोना ने कोना एकटा हुनक निकट केर शिष्य के ज्ञात भ गेलैक जे गुरुजी के संग में पारस पाथर छैन, किंतु कतौ छैन कहाँ छैन से ओकरा नहीं बुझल रहेक। ओ सतत एही चेष्टा में रहे जे कोनहुना गुरु सँ ओ पाथर लऽ लेल जाय। ओ गुरुक विश्वास पात्र बनबाक चेष्टा करय लागल, गुरु प्रसन्न भेलखिन। एक दिन शिष्य मनक बात हुनका कहलकनि, गुरुजी हमरा पारस पाथर चाही। गुरु पाथर देबा लेल तैयार भऽ गेला, लोह पेटिका दिस इंगित करैत बजला, ओ पेटी उठा लाओ। शिष्य पेटी उठा लेन, पेटी में ताला लागल छल, चाभी नहीं छले, ताला तोड़बाक उपक्रम होमय लागल। शिष्य के शंका छले जे गुरुजी ठकि तने रहला अछि, कारण जो एहि पेटी में पारस पाथर रहतैक तखन त ई पेटी सोनाक बनि गेल रहतैक। ताला टूटल, ओहि में पुरान वस्त्र में लपेटल छल पारस पाथर, ओहि में सँ पाथर बाहर कय शिष्य के दैत गुरु बजलाह। पाथर वस्त्र में लपेटल छल, तैं ई पेटी स्वर्णमय नहीं भ सकल। ब्रह्म आ जीवक संयोग हेबा में वा गुरु शिष्य में संबंध स्थापित करो में स्व अथवा अहं ओहिना बाधक होइ छ जना पारस पाथर आ लोहक बीच संपर्क हेबा में ई वस्त्र। जौं पारस वस्त्र सँ आवृत नहीं रहित तो पारसक संपर्क सँ लौह पेटिका सोनाक बनि गेल रहतैक। आध्यात्म चिंतन में स्व केर त्याग अनिवार्य होइ छ। गुरु शिष्य संबंध सेहो तखने सुदृढ़ होइ छ जखन कि शिष्य स्व केर त्याग कऽ पूर्ण समर्पण भाव

0: सँ गुरुक समक्ष तत्वज्ञान प्राप्त करबा लेल उपस्थित होइ छै।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाई लोकन, आजुक चर्चा का विषय है कृषि का आधुनिक और उन्नत यंत्र। अपना सबक देश कृषि प्रधान देश है, जत आइयो पैघ आबादी खेती पर निर्भर रहते है। समय के संग कृषि क्षेत्र में सेहो तकनीकी बदलाव तेजी से भेल। पहले खेती पूरा तरह पशुधन और मानव श्रम पर आधारित छल, जाहि से बेसी समय और मेहनत लागे छल। लेकिन आब आधुनिक और उन्नत कृषि यंत्र खेती का आसान, तेज और लाभकारी बना दलक है। आय किसान कम समय में बेसी उत्पाद प्राप्त कर रहल छथि। आधुनिक कृषि यंत्र न केवल किसान भाई के मेहनत कम करित अछि, बल्कि उत्पादन के गुणवत्ता और मात्रा दुनू के बढ़ेबा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करित अछि। किसान भाई लोकनि, ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के सबसे महत्वपूर्ण यंत्र मानल जात अछि। पहले खेतक जुताई बरस होइ छल, जाहि में बेस समय लाग जाय छल। आब ट्रैक्टर के सहायता से कमे समय में पैघ क्षेत्रक जुताई आसानी से कयल जा सकैत अछि। ट्रैक्टर के संगे ही कई एक आन उपकरण जेना कि रोटावेटर, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल सेहो लगाओल जात अछि, जाहि से खेती के काज और बेसी आसान भऽ जात अछि। रोटावेटर खेत के माटि के भुरभुरा और समतल बनेबा में उपयोगी अछि। ऐसे खेत जल्दी तैयार भऽ जात अछि और फसल के बुआई नीक जकाँ होइत अछि। ओते सीड ड्रिल के सहायता से बीया के समान दूरी पर बुआई होइत अछि, जैसे बीया के बचत होइत अछि और उत्पादन सेहो बढ़ैत अछि। पटौनी के क्षेत्र में सेहो आधुनिक तकनीकी के पैघ योगदान अछि। ड्रिप पटौनी प्रणाली और स्प्रिंकलर पटौनी प्रणाली एहन तकनीकी से पानि के बेस बचत होइत अछि। ई प्रणाली सब द्वारा पौधा के जड़ तक सीधे पानि पहुँचैत अछि, जैसे फसल के वृद्धि नीक होइत अछि और जल संरक्षण सेहो होइत अछि। किसान भाई लोकनि, कटाई के क्षेत्र में हार्वेस्टर किसान भाई लोकनि के काज बहुत आसान बना देलकनि हैं। पहले फसल काटबा में कई मजदूर भाई और बेसी समय का आवश्यकता होइ छलै, जखन कि आब हार्वेस्टर किछुए घंटा में पैघ खेतक कटाई कऽ दैत अछि। ऐसे मजदूरी के लागत कम होइत अछि और समय के बचत सेहो होइत अछि। किसान भाई लोकनि, आइ काल्हि ड्रोन तकनीकक उपयोग सेहो तेजी से बढ़ि रहल अछि। ड्रोनक माध्यम से खेत में दवाई और उर्वरक का छिड़काव कयल जा रहल अछि। ऐसे दवाई सब के समान वितरण होइत अछि और किसान भाई के समय और मेहनत दुनू बचैत अछि। ड्रोन तकनीक फसल के निगरानी और रोग पहचान में सेहो सहायक साबित भऽ रहल अछि। आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग से किसान भाई के आय बढ़ रहल अछि। कम लागत में बेसी उत्पादन प्राप्त हेबा से खेती लाभकारी बनि रहल अछि। संगहि युवा पीढ़ी सेहो आधुनिक तकनीक के कारण कृषि दिस आकर्षित भऽ रहल छथि। सरकार सेहो किसान के सब्सिडी और प्रशिक्षण दऽ आधुनिक यंत्र के अपनेबाक लेल प्रोत्साहित कऽ रहल अछि। ताहि कारणे कहल जा सकैत अछि जे आधुनिक और उन्नत कृषि यंत्र आजुक समय में खेती के रीढ़ बनि चुकल अछि। ई यंत्र कृषि के वैज्ञानिक, सरल और लाभकारी बना रहल अछि। भविष्य में नव तकनीकी के प्रयोग से भारतीय कृषि और बेसी विकसित हैत आ किसान भाई के आर्थिक स्थिति मजबूत हेतन। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा के एतहि विराम दैत आशुतोष कुमार झा के विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज विषय था कृषि के आधुनिक एवं उन्नत यंत्र। जानकारी दे रहे थे आशुतोष कुमार झा। ये आकाशवाणी का

0: दरभंगा केंद्र है। इस समय सुबह के 6 होने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई

0: इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानेंगे उच्च रक्तचाप लक्षण और सावधानियों के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर एके गुप्ता साहब, ये हाई बीपी जब हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, ये है क्या?
3: सामान्य रक्तचाप का मतलब होता है 120 बटा 80 से कम। अगर किसी भी व्यक्ति को 120 बटा 129 से ऊपर में सिस्टोलिक बीपी डायस्टोलिक बीपी 80 से कम है तो वो होते हैं प्री हाइपरटेंसिव। और उच्च रक्तचाप का मतलब हुआ अगर आपका बीपी 130 बटा 80 से ज्यादा है तो आपको उच्च रक्तचाप है और आपको इसका इंतजाम बात करना चाहिए।
2: क्या उच्च रक्तचाप की समस्या किसी खास उम्र में होती है या फिर ये किसी को भी हो सकती है?
3: उच्च रक्तचाप हम लोग दो टाइप में जानते हैं, एक का नाम होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है इसमें कुछ न कुछ कारण मरीज को जरूर होता है। अगर किसी बच्चे को अपने किडनी की बीमारी हो, किडनी के आर्टरी की बीमारी हो, क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा हो, या इस तरह की शरीर में या हार्मोन की कोई बीमारी हो तो बीपी कम ही उम्र में बहुत हाई हो सकता है, इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन इसकी वारदात बहुत कम है, लेस देन 5%। 95% ऐसे लोगों को होती है बीपी जिनका कॉज हमको अंदाजा नहीं होता है और वो ज्यादातर 40 साल के बाद लोगों को होती है।
2: क्या इसके कुछ लक्षण है या फिर ये चुपचाप बीपी बढ़ी हुई होती
3: लक्षण
2: है लोगों को सालों साल?
3: ज्यादातर लोगों में जो हम लोगों ने देखा है बीपी के पेशेंट को, लक्षण इसमें नहीं होता है। कुछ लोगों को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी अन्य कारण से, उस समय बीपी उनको अपने देखा गया तो बीपी बहुत हाई था। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि माथा में दर्द या भारीपन या चक्कर हो या कमजोरी हो तो बीपी होगा, लेकिन इस तरह के संख्या बहुत कम है। ये मान के चलिए कि ये साइलेंट अपना किलर है, इसमें लक्षण का इंतजार करना अकलमंदी नहीं है।
2: तो सवाल ये है कि डॉक्टर की सलाह यानी चिकित्सक की सलाह लोग कब लें?
3: उसके बारे में रिकमेंडेशन है कि अगर आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, तो आप 18 साल की उम्र से जागरूक हो जाएं, साल में एक बार अवश्य बीपी अपना जानें। बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वेट, इतना साल में एक बार आपको जानना चाहिए। अगर फैमिली में इस तरह की कोई बात नहीं है तो 30 साल की उम्र के बाद आपको साल में एक बार अपना चेकअप ये सब जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तंबाकू से रहते हैं दूर तो समझिए कि 95% उम्मीद है कि हार्ट अटैक लकवा से अपने आप को आप बचा पाएंगे।
2: दवा की जरूरत कब है?
3: दवा की जरूरत है कि अगर लगातार बीपी 130 बटा 80 से ऊपर रहता है, 134, 84, 140, 90, तो एज ए फिजिशियन एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग लाइफ स्टाइल में कुछ उनको बताते हैं परिवर्तन। उससे एक दो महीने के इस्तेमाल के बाद अगर बीपी नहीं कंट्रोल होता है तो हम लोग दवा स्टार्ट कर देते हैं।
2: अगर किसी व्यक्ति की बीपी हमेशा हाई रहती है तो क्या उन्हें जीवन पर्यंत दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है?
3: ऑलमोस्ट उनको दवाई खाना पड़ता है।
2: हाई बीपी की समस्या झेल रहे लोगों में किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं?
3: खासतौर से हार्ट की जो भी समस्या है उसकी माँ है ये। सारी दुनिया में अपने विद्वानों का सारा फोकस बीपी पर है। वो मान के चलते हैं कि बीपी को अगर आपने कंट्रोल अपना कर लिया तो आप जैसे हार्ट अटैक, हार्ट में स्टेंट का लगना, बाईपास सर्जरी का होना, किडनी का फेल होना, इसमें काफ़ी हो जाएगी कमी। इतनी सारी रोगियों का संख्या का बढ़ना के पीछे एक ही कारण है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन।
2: कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसकी जरूरत हाई बीपी के पेशेंट्स को है?
3: सावधानियों में सबसे जो आवश्यक है कि अपने वेट को नियंत्रण में रखें, खाने में नमक की मात्रा को घटाएं, उसमें सबसे आवश्यक है कि बाहर की जो अपने बनी हुई चीज है, प्रोसेस्ड फूड है या जो पैकेट में आती है नमकीन वगैरह सब चीज, स्नैक्स की चीज, बेकरी प्रोडक्ट, इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। घर का अपना बना हुआ शाकाहारी खाना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और घर के खाने में भी कुछ परहेज करना पड़ेगा, चटनी, चाट, पापड़, अचार जिसमें अधिक सॉल्ट है उसको नहीं खाएं। हरी सब्जी, हरे फल और शाकाहारी खाना खाएंगे तो आपको नमक कम मात्रा में होगी। और नमक का अगर खाने की घर में बात हो तो अगर लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, खास करके जिनको बीपी है तो उनके लिए ये फायदेमंद है।

0: मानसिक अपना तनाव को कम करें, और सबसे जरूरी चीज है कि अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाएं। अभी का सिडेंटरी हैबिट का मुख्य कारण है मोबाइल फोन का देखना कम करें, और उस वो समय एक्सरसाइज, योगा, टहलने में बिताएं तो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा।
1: डॉक्टर AK गुप्ता साहब, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, आपका धन्यवाद।
2: श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। आज विषय था उच्च रक्तचाप, लक्षण एवं सावधानियां। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR। हमारे इस ऐप के माध्यम से हम आपके स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध हैं। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। सची का है कि स्नान से हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाता है, पर हम अपने मन को अशुद्ध ही रखते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम सुनना या जपना परम आवश्यक होता है। साबुन पानी से तो हम अपने तन के मैल को धो लेते हैं, लेकिन मन के मैल को धोने के लिए एकमात्र भगवान के नाम का ही सहारा हमें पार लगाता है। मन विकारों से मुक्त हो तो ये प्रभु के करीब होता है। कहते हैं जिस तरह से अगर किसी बर्तन में पहले से ही कुछ भरा रहे तो उसमें हम और कुछ ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बर्तन अगर खाली हो तो उसमें हम जो चाहे वो रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने मन को विकारों से मुक्त रखना चाहिए। लोभ, लालच, घृणा, मोह और द्वेष, ये ऐसे विकार हैं जो हमें प्रभु से दूर करते हैं। प्रभु के करीब होने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हमें उनके चरणों में समर्पित होना पड़ता है, और जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो भगवान का नाम ही हमें इस भव सागर से पार लगाता है।

अभी आप सुन रही थी चंद फिल्मी गजलें। फिल्में थी अर्थ, तरकीब और नरगिस। आवाज़ें थी जगजीत सिंह, अलका याज्ञिक और लता मंगेशकर की। ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजा जाते ही अब हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा

0: के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम, मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।

संध्या 6:25 पर कामघर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल 6:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनेंगे 7:00। कुछ फिल्मी गाने आप सुन सकेंगे 7:52 पर। खेल गतिविधि पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे 8:15 पर। फिल्मी गाने आप 9:30 पर भी सुन सकेंगे। 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

कल प्रातः है 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन हम अपने पटना केंद्र से रेले कर आप तक पहुंचाएंगे 9:10 पर। कुछ विद्यापति गीत सुनिएगा 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित जसराज को 11:00। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। महिलाएं अपना कार्यक्रम नाड़ी संसार सुनेंगी 12:30 पर। 1:10 पर देशभक्ति गीत। रोजगार सूचना आप सुनेंगे 2:10 पर।

अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी कल संध्या 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम से। इसके अंतर्गत आप चर्चा सुन सकेंगे नशा मुक्ति और युवा। कुछ विद्यापीठ गीत सुनिएगा संध्या 6:10 पर, संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गांव घर सुनेंगे संध्या 6:30 पर। किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा संध्या 7 बजे। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुनिएगा रात 8:15 पर। पब्लिक के स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। संध्या के 6:25 हुआ चाहते हैं। कुछ एक पल में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि अछि जे शिक्षण काज मे लापरवाही कयनिहार शिक्षक लोकनिक विरुद्ध कड़गर कार्रवाई कयल जायत। पटना मे पत्रकार लोकनि सँ गपशप करैत श्री तिवारी कहलनि जे प्रदेश मे शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ बनेबाक लेल विभाग लगातार काज कऽ रहल अछि। एहन स्थिति मे अपन जिम्मेदारी सँ लापरवाह शिक्षक लोकनिक विरुद्ध कड़गर कार्रवाई होयत। ओ कहलनि जे सरकारी स्कूल सभ मे नीक जकाँ पढ़ाई, शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबुल आ अतिरिक्त वर्गक व्यवस्था सेहो कयल जा रहल अछि।

0: सरकार वजन आ मापक जांच प्रणाली के सुदृढ़ करबाक लेल जांच केंद्र GATC भूमिकाक विस्तार करत। एहि लेल वर्ष 2013 नियम मे संशोधन कयल गेल अछि। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय कहलक अछि जे नव नियमक अंतर्गत एहि केंद्र सभ पर वजन आ मापक 23 श्रेणीक सत्यापन भऽ सकत। एहि मे पेट्रोल आ डीजल, CNG, LPG, LNG आ हाइड्रोजन डिस्पेंसरक जांच सेहो सम्मिलित अछि। एकर उद्देश्य व्यापार के पारदर्शी बनेबाक, व्यवस्था मे तकनीकक उपयोग आ वैश्विक मानकक अनुरूप आत्मनिर्भर भारतक परिकल्पना के बढ़ावा देब अछि। जदयूक कार्यकारी अध्यक्ष आ राज्यसभा सांसद संजय झा केंद्रीय वाणिज्य आ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सँ भेंट कऽ मिथिलांचलक विकासक वास्ते अनुरोध कयलनि। श्री झा केंद्रीय मंत्री सँ मधुबनी जिला मे राष्ट्रीय डिजाइन केंद्रक स्थापना करबाक मांग कयलनि। केंद्रीय मंत्री एहि वास्ते श्री झा के आश्वस्त सेहो कयलनि। दरभंगा हवाई अड्डाक सिविल एनक्लेव धरि पहुँच के सुदृढ़ बनेबाक लेल NH-27 सँ पहुँच पथक निर्माण कराओल जायत। एहि वास्ते 12 करोड़ सँ बेसीक निविदा आमंत्रित कयल गेल अछि। दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर एहि पहल लेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग केंद्रीय मंत्री आ प्रदेशक मुख्यमंत्रीक प्रति आभार व्यक्त कयलनि अछि। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगामी विधान परिषदक चुनाव मे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ विद्यासागर विद्यार्थी आ तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के प्रत्याशी बनेबाक निर्णय कयलक अछि। पटना मे पार्टी कार्यालय द्वारा ई जनतब देल गेल। प्रदेशक दक्षिणी भाग मे प्रचंड गर्मी पड़ि रहल अछि। अधिकांश ठाम पर तापमान 40 डिग्री सँ बेसी भऽ गेल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त संवादक अनुसार रोहतासक डेहरी राज्यक सभ सँ गर्म स्थान रहल, जतय अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल। विभाग अगिला 24 घंटा मे बक्सर, कैमूर, रोहतास आ औरंगाबाद जिला मे लू चलबाक संभावना व्यक्त कयलक अछि। दोसर दिस प्रदेशक दक्षिणी भाग में अधिकांश स्थान पर मौसम शुष्क बनल रहत। राज्यक उत्तरी भाग में निम्न दबावक क्षेत्र बनबाक कारण अन्हर, बरखा आ ठनका खसबाक स्थिति बनल अछि। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार जिला में कतेको ठाम अन्हर आ बरखा के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयने अछि। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियानक अंतर्गत युवा संगमक 6ठम चरण में पंजाब सँ आयल प्रतिनिधि लोकनि लेल IIIT पटना में स्वागत सह ओरिएंटेशन कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम में युवा लोकनि के संबोधित करैत पुलिस महानिदेशक विनय कुमार देशक विविध संस्कृति के बुझबाक, आपसी संवाद बढ़ेबाक आ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभेबाक अपील कयलनि। एहि अवसर पर IIT पटनाक निदेशक प्रोफेसर TN सिंह आ विधायक सुरेंद्र मेहता सेहो उपस्थित छलाह। अररिया जिला अंतर्गत झमटा गाम में परमान नदी पर बनल पुल के क्षतिग्रस्त होयबाक जांच शुरू कऽ देल गेल अछि। पटना आ पूर्णिया सँ विशेषज्ञ अभियंता लोकनिक दल क्षतिग्रस्त पुल लग पहुँच कऽ दरार वाला हिस्साक जांच कयलक। सेनाक खुफिया एजेंसी आ राज्य पुलिसक STF टीम पूर्वी चंपारणक मोतिहारी सँ जाली नोटक नेटवर्क चलाबे वाला गिरोहक सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी के गिरफ्तार कयलक अछि। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल आ बांग्लादेश मे जाली नोट सँ संबंधित कतेको मामला दर्ज अछि। भागलपुर जिला मे महात्मा गांधीक आगमनक 100 वर्ष पूरा हेबा पर 8 आ 9 अगस्त के कार्यक्रमक आयोजन कऽ राष्ट्रपिता के श्रद्धांजलि देल जायत। कार्यक्रमक तैयारी के लऽ कऽ बैसार कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कामघर कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत गुनगुनैत मन सुनिहार सब श्रोता लोकन के मीर कुमार झा के नमस्कार संगे देवू भाई हूँ के नमस्कार की हाल चाल छे।
1: बहुत नीक मीर भाई आ संग संग जे छे समस्त श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार और संग में अहो के नमस्कार। तो आज जो है आज जो है मिहिर भाई जे आज रविवार दिन है रवि दिन है और रवि दिन को हमारा लोग साप्ताहिक कार्यक्रम सुने गुनगुनाइत मन गुनगुनाइत मन में बहुत रास चिट्ठी पत्री जो हमारे श्रोता लोग के ठाम ठाम से आवत है तो हुनक जे फरमाइशी है हुनक जे मन पसंद जो लोकगीत है से सब सुनबे करब। मुदा हमारा लोग के कार्यक्रम के शुरुआत आ श्री गणेश जो छी दोहा से हमारा लोकन करे छी तो दोहा के बोल की है वो हमारे श्रोता लोकन के बता दिल जाओ।
0: हाँ देवू भाई आज जो दोहा हम अनलौं ये श्रोता लोकन के लेल वो अनलौं ये पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई ढाय आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देवू भाई कबीरदास ऐ दोहा के माध्यमे कहित छथि जे पुस्तक पढ़ पढ़ के दुनिया थाकि गेल परंतु क्यों विद्वान कहाँ बनला जे क्यों प्रेमक ढाय अक्षर पढ़ि लै छथि आ ओकरा मन में उतारि लै छथि वह सच्चा प्रेम बुझै छथिन आ वह पंडित होइ छथि।
1: ठीके कहलौं है कि ढाय अक्षर यानी एहन प्रेमक गप करबाक चाहिए हमरा लोकन के कि सबके निक लागे किनको जो छै अधलान नहीं लगे वाणी एहन हमरा लोकन के जो छै बजबाक चाहिए मीर भाई कि बानिये में सब कुछ है तो तै दुआरे हमारा लोकन के सदखन ई प्रयास करबाक चाहिए। हमारा लोकन सामाजिक प्राणी छी समाज में रहे छी और समाज में रह कर मिल घुल कर समाज के संग मिलजुल कर रहबाक चाहिए कोनो तरह जे प्रयोजन करे छी काज करे छी तो ओहिमे सब गोटे के सहमति।

0: कि बानिये में सब कुछ है तो ते दुआरे हमारा लोकन के सदखन ही प्रयास करवाक चाहिए। हमारा लोकन सामाजिक प्राणी छी, समाज में रहे छी, और समाज में रह कर मिल घुल कर समाज के संग मिलजुल कर रहबाक चाहिए। कोनो तरह जे प्रयोजन करे छी, काज करे छी, तो ओहिमे सब गोटे के सहमति ल के जो काज करी ओ काज बुझू जे बहुत ही निक लागत है, अच्छा लागत है। ताहि दुआरे हमरा लोकन के सदखन इहे हमरा लोकन के प्रयास रहबाक चाही।
1: देखियो देवू भाई, भारत सरकार एकटा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 9-15 सूत्री कार्यक्रम सेहो शुरू कयने अछि। एकर मुख्य उद्देश्य देवू भाई असूचित अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जाहिमे मुस्लिम भाई बहिन लोकन, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन भाई लोकन बहनिक सब सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार क के हुनका लोकन के विकासक मुख्य धारा में आनल जाए। देखियो देवू भाई, ई कार्यक्रम अल्पसंख्यक लोकनिक कल्याण के लेल प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के शुरुआत सच्चा समिति के रिपोर्ट के बाद कैल गेल छल, जाहि में अल्पसंख्यक भाई बहन लोकनिक खास क के मुस्लिम भाई लोकन सबके शैक्षणिक आर्थिक स्थिति के विशेष दयनीय पाओल गेल है। देवू भाई, प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम अपन दिशा निर्देशक अनुरूप काज क रहल अछि। एहि कार्यक्रम के मुख्य तौर पर चार भाग में बाँटल गेल अछि। पहिल यह शिक्षा के अवसर पर प्रस्तावित आ उन्नत करब, आ दोसर यह आर्थिक गतिविधि आ रोजगार में समान हिस्सेदारी, तेसर यह जीवन स्थिति में सुधार, ऐ सब तरह जे छे सांप्रदायिक दंगा सबके रोकथाम आ पुनर्वास सेहो।
0: बहुत निक, बहुत निक मिहिर भाई कभी तो जे जे सबक साथ आ सबक विकास, तो जो सब गोटे मिलजुल क जे हमरा लोकन एकटा देश के जे आगू बढ़ाब, तो ऊ बुझू जे बहुत ही प्रगति बाट पर जे छे हमर देश चलत। तो ओहिमे प्रगति बाट पर कोना जात जहन सब गोटा मिलजुल क कोनो काज के, कोनो परियोजन के, आ सब भाई गोटे जहन आगू डेग सौ डेग मिला के आगू चलब, तखने ना हमर सब गाम समाज आ राष्ट्र के विकास हैत। तो जो एहि तरह जे हमरा लोकन के सबहक साथ सबहक विकास के भावना रखबाक चाही, तखने हमरा लोकन जे छे समाज आ हमर राज हमर राष्ट्र आगू बढ़त रहत। तो मीर भाई बेर रह फिर आगू गपशप करब, मुदा देख रहल छी जे हमर श्रोता लोकन के जे सेहो पत्र आयल अछि, तो ई पत्र कतौ से आयल अछि वो हमर श्रोता लोकन के बता देल जाओ।
1: हमरा लग जे चिट्ठी आयल अछि देवू भाई, बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से लिखनहार छथि संतोष कुमार मुखिया, रानी अनिता राज, रानी गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार। इस तरह एकटा और पत्र आयल अछि लंगरा चौक झंझारपुर से लिखनहार छथि जयशंकर पासवान, रानी कुमारी फिल्म हिरान। इस तरह एकटा और पत्र आयल यह घोरडिया मधुबनी से लिखनहार छथि अंशु कुमार झा, नीता कुमारी, अक्षय कुमार झा। सब आयल यह पत्र, अहाँ लग कौन पत्र आयल?
0: हमरा लग आयल सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मुरबा से भेजे वाला भाई छथि भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज अरियन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बिरागे। तो आओ वहाँ लोकन सुनी हुनक ई लोक, हुनक पसंद ई लोकगीत
1: सुनल जाए।

0: हमरा अंगना में उगि गेल चांद, ई कलाकार छला राधा मोहन मिश्र, खूब निक लागल। आशा करै छियनि श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतन। आब देखो मिहिर भाई जे ई पत्र आयल अछि हमरा लग टावर चौक आशापुर सँ, भेजे वाला श्रोता छथि भाई प्यारे लाल मनोहर, उमर लाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर, प्रेम लाल मनोहर।
1: हमरा लग जे चिट्ठी अछि नरहन स्टेट फुटानी चौक से लिखनहर छथि भाई फटपटिया झा, फुलेश्वरी देवी, फूल कुमारी, फेकनी झा, ई सब सुनऽ चाहै छथि
0: ई लोकगीत।

0: हाँ मीर भाई अखन हमारा लोकन कुमुंद अखौरी के स्वर में लोकगीत सुनल छो आशा करै छी जे श्रोता लोकन सेहो हुनका लोकन के नीक लागल हेतन आब देखू हमरा लोकन ओना तो समय में बांधल छी और हमरा लोकन जे कुछ प्रायोजित कार्यक्रम सेहो अछि तो ओहो ना श्रोता लोकन के सुनबन तो आई हमरा लोकन प्रायोजित कार्यक्रम
1: ममता का आंचल
0: सुनै छी ममता के आंचल
1: तो सुनल जाए
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार मैं हूं राजेश ममता का आंचल ये कार्यक्रम है और आज इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या साधारण बीमारियां अगर हों तब भी बच्चा नहीं होता है। हमने कहा कि आज इस कार्यक्रम ममता का आंचल कार्यक्रम जो है उसमें ये चर्चा करेंगे कि क्या साधारण बीमारी अगर हो जाए जैसे हाँ बता देते हैं जैसे थायराइड चीनी मोटापा इस तरीके की बीमारी अगर हो जाए तो क्या बच्चा होने में परेशानी होती है या बच्चा नहीं हो सकता है। डॉक्टर श्रद्धा से आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ समय नहीं गंवाते हुए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बताते हैं और सीधे सीधे डॉक्टर श्रद्धा को बुलाते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट करें 9162562266 9162562266 ये नंबर है। इम्पोर्टेंट है आज का विषय बहुत क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता ही नहीं है। डॉक्टर श्रद्धा ने आज ये चर्चा की और हम आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें पहुंचा रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर श्रद्धा आपका आज के हमारे इस ममता का आंचल कार्यक्रम जो है इसमें।
4: नमस्कार श्रोताओं। नमस्कार राजेश जी। आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है क्या सामान्य यानी कि अन्य मेडिकल डिसऑर्डर्स भी कारण हो सकते हैं निसंतानता की। सबसे पहले तो जान ले निसंतानता क्या होती है। वैसे दंपति जो पिछले एक साल से प्रयास कर रहे हैं बच्चा और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है
3: जी।
4: ऐसे दंपति को निसंतानता कहा जाता है कि वो निसंतान दंपति
3: हाँ, हाँ।
4: और ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज संभव है।
3: आज जो हमने ये हुक लाइन दिया है कि क्या साधारण बीमारियां भी बच्चा नहीं होने का कारण बन सकती हैं जिसमें थायराइड को हमने पहले नंबर पर रखा इसके बारे में बताइए थोड़ा।
4: थायराइड एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकता है। मेरे पास अक्सर ऐसे भी मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ कि कभी थायराइड का टेस्ट हुआ, बोलते हैं हाँ हुआ तो है लेकिन हम दवाई नहीं खा रहे हैं।
3: अच्छा।
4: मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खा रहे तो बोलते हैं कि अगर खा लेंगे तो हमको आदत हो जाएगा और जिंदगी भर खाना पड़ेगा।

0: लेकिन मैं साथ में ये बताना चाहती हूँ, अगर थायराइड है तो आपको दवाई अवश्य खाना होगा, क्योंकि इससे आपके शरीर में जो थायराइड की कमी है
1: जी,
0: उस दवाई से ठीक होगा। और अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होंगी, जिसमें से एक बड़ा दिक्कत है कि आपको बच्चा ठहरने में दिक्कत होगा, क्योंकि थायराइड वो हार्मोन है जिसके कारण अंडाशय औरत का अगर वो कम है तो अंडे का क्वालिटी घटता है
1: जी।
0: ना केवल अंडे का क्वालिटी घटता है, उस औरत में अंडे की जो संख्या होती है वो तेजी से घटते जाती है। यानी कि आजकल बहुत देखा गया है कि कम उम्र में ही एक औरत का मासिक खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका अंडा खत्म हो जाता है। और एक बड़ा कारण होता है कि थायराइड
1: जी,
0: तो थायराइड अंडा की एक औरत के अंडाशय में जो अंडा होता है उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करता है और उसकी संख्या को भी मेंटेन करता है। साथ ही थायराइड वो हार्मोन है जिससे हर महीने औरत में जो अंडा फूटता है उसमें थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही जब बच्चा बनता है और नली से बच्चेदानी का जो नली से गर्भाशय में जब आता है और जब चिपकना होता है उस समय भी थायराइड ही हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है।
1: ये तो बहुत बड़ी बात है।
0: बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई भी बीमारी को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपके आपको बीमारी है तो आप दवाई अवश्य लें। मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो बेहतर है आप थायराइड चीनी का अपना जांच कराएं, मोटापा कम करें, बल्कि रूबेला जैसा भी बीमारी का अपना जांच करा लेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप आज जांच कराएंगे तो आपको जांच करा लेंगे और चीज को कंट्रोल में ले आएंगे तो बच्चा ठहरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सही समय पे इलाज कराएंगे तो आपको निसंतानता से भी जूझना नहीं पड़ेगा।
1: बहुत बड़ी बात आज की जो बात कही थी वो ये था कि साधारण बीमारियां भी कभी कभी बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करती है, और खास करके वैसे दंपत्ति जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि थायराइड एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपको बच्चा नहीं होने के लिए। बड़े बुजुर्गों, अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई कि अब बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास भेजना है, और अब थायराइड की जांच भी करानी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा। डॉक्टर श्रद्धा से हमारी बातचीत चल रही है। IVF एक जो साधन है ना बच्चा प्राप्त करने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है। आसानी से बच्चा हो जाता है, और बच्चा नहीं होना सिर्फ एक बीमारी है, और जैसा कि डॉक्टर श्रद्धा ने अभी अभी कहा था कि ये बीमारी है और इसको ठीक किया जा सकता है। नंबर हम दे रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा का, बात कर लीजिएगा 9162562266 9162562266। एक और बात, EMI पर इलाज होता है। EMI यानी टुकड़ों में पैसा देके आप अपना इलाज श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, जहां से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जिनके सपोर्ट से वहां सारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। अपने पास के किसी चिकित्सक या निसंतान रोग विशेषज्ञ से भी आप दिखा लीजिए, कम से कम जाइए तो, और सही डॉक्टर के पास जाइए। फिलहाल डॉक्टर साहिब भाई, तो थायराइड की बात हो गई, चीनी शुगर इसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल, अगर हम निसंतानता के बारे में बात करें और डायबिटीज के बारे में नहीं बात करें तो फिर ये बेईमानी होगी सबके साथ। डायबिटीज तो आप सबों को पता होगा, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है
1: जी, जी।
0: और इसका भी बहुत सारा शरीर के बहुत सारे अंग पे असर पड़ता है। चूंकि मैं निसंतान रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं निसंतानता के बारे में ही बात करूंगी
1: जी।
0: शुगर जो होता है ये प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत कराता है, औरत में तो दिक्कत कराता ही है, पुरुष में भी दिक्कत कराता
1: जी।
0: है पुरुष में जो है वो धात, कहते हैं धात पतला हो रहा है
1: जी।
0: एक्चुअली धात पतला होने का क्या मतलब होता है, जो शुक्राणु बनते हैं और जिसको उसको जिस रास्ते से आना होता है
1: जी,
0: उस रास्ते से नहीं, वो उल्टा चला जाता है।
1: अच्छा।
0: और फिर वो उसके कारण धात पतला होने लगता है, और आप समझ सकते हैं इसके साथ इसके कारण पुरुष निसंतानता बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है।
1: अच्छा, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में ये समस्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जरूरी है आप सही खान पान करें, जंक फूड से दूर रहें, रोज व्यायाम करें और शुगर का इलाज कराएं। कोई दंपति जब इलाज के बाद उनको बच्चा, जिसमें दंपति खासकर औरत को अगर डायबिटीज हो और इलाज के बाद बच्चा ठहर भी जाता है
1: जी,
0: तब भी वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क होता है, यानी कि उस औरत को अधिक

0: तरकारी हाट बाजार में जो खोजबै तो वहाँ के भेटिए जाए। तो सबसे पहले भेटिए जाए तो पाछो कारण छे कि हमारे किसान श्रोता लोकन सदखन खेत पथार में लगल रहे छथिन और अनेको तरह तीमन तरकारी के जो छे जे उपजा करत रहे छथिन, तखने न हाट बाजार में आवे है। तो हमरा लोकन जो तीमन तरकारी जो करे छी अनेको प्रकार के, तो आज तो द फूलकोबी के भेल, बंदा कोबी के भेल, मटर भेल, तो इस सब के तीमन तरकारी के जो छे कखनो जहाँ के भेट जात आ संग संग कर मांग जो छे सोहो सदखन हाट बाजार कोनो तरह मुंडन करू, जनऊ करू, उपनयन करू, ओहि काल में जो छे अहाँ के जहाँ खोजबै तनि ओहि काल में अहाँ के भेटिए जात। आ ओनाहियो जेकर जो छे तनि मेजन भ जाए छे फूलकोबी के आलू के संग और अति उत्तम भ जाए छे, तो एकर खेती जो छे एकर प्रभेद जो छे मीर भाई सेहो होते।
1: हाँ देखियो देवू भाई, फूलकोबी के उन्नत खेती के समय आब चल रहल अछि। फूलकोबी के उन्नत खेती मई आ जून मास में अगेती फूलकोबी के खेती किसान भाई लोकन के लेल बढ़िया मुनाफा दैत अछि। देखियो देवू भाई, फूलकोबी के उन्नत खेती के लेल नीक बिया के चुनाव, वैज्ञानिक तरीका से बेड प्रबंधन के समय जे छे से ओ रखबा आब भ रहल अछि। एकर बेड प्रबंधन के समय के संग संग एकर की फूलकोबी में कीड़ा मकोड़ा के प्रबंधन जे छे ओहो बड़ प्रकोप रहै छे।
0: हाँ देखियो, खास कऽ के खरीफ मास वाला जो छे जे तीमन तरकारी अछि आ खरीफ मास में जो छे मिहिर भाई ओनाहियो जो देखै छियै कि कीट पतंग के जो छे समस्या बेसी से बेसी बढ़ जात, किएक तऽ ओहि काल में हरियाली जो छे ना हमरा सबके खेत पथार में बाध वन में बाड़ी झाड़ी में जे बहुत रास जे समस्या जो छे उत्पन्न भ जाए छे। तो तै दुआरे जहन खेती बाड़ी करे छे, देखो खेती करे में मेरे भाई पूंजी लगे छे, मेहनत लगे छे, परिश्रम लगे छे, तखन जाके नीक उपजा बाड़ी होइ छे। तो नीक उपजा बाड़ी केना हैत ओहि लेल जो छे समय समय पर जो छे देख रेख तीमन तरकारी के करत रहियौ, कीट प्रबंधन के ध्यान में जखन रखबै ना तखने जाके बुझू जे नीक अहाँ के जो छे तीमन तरकारी हैत। आ जहन नीक तीमन तरकारी हैत तखने अहाँ के जो छे अहाँ के जो छे उपजा बाड़ी सेहो नीक हैत, आ जहन उपजा बाड़ी नीक हैत तऽ अहाँ के जो छे आमद हैत, तखने मन में जो छे मन प्रसन्न हैत। तऽ आगे की विचार मिहिर भाई
1: की?
0: तऽ हमरा लोकनि जो छै हमरा लोकन जो छै खेती बाड़ी में जो है तीमन तरकारी लगाबे करै छी, लेकिन तीमन तरकारी के संग संग बहुत राज्य जो छै देखियौ अखनका जो जलवायु परिवर्तन भ रहल छै, तो जलवायु परिवर्तन के संग संग जो छै आनो जो व्यवसाय के हमरा लोकन के अपनाबे पड़त मिहिर भाई, कि एकेटा फसिल पर टिकल रहब आ एके स्थान पर टिकल रहब तो गुजारा नहीं होत। तो हमरा लोकन के जो आई हम एकटा भेंट वार्ता सुनब जे एकीकृत मछली पालन कोना करी और एकरा समय समय पर देखरेख कोना करी जैसे बेसी से बेसी आमद प्राप्त भ सके, तो अहि विषय से आज संबंधित हमरा लोकन एकटा भेंट वार्ता सुने छी। भेंट वार्ता के विषय है एकीकृत मछली पालन। भेंटकर्ता छथि डॉक्टर मनोज कुमार आ हिनका से गप कऽ रहल छथि रंजना झा। तो आओ दुनू गोटे के बीच जे भेल गपशप हमरा लोकन सुनी।
1: हाँ सुनी।
2: आइ दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित छथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा के माछ विभागक तकनीकी सहायक मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, मैं आपको बताऊंगा मछली पालन किस प्रकार से फायदेमंद है। मछली पालन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि किसान भाई एक तालाब बनाकर पोखर बनाकर आप मछली पालन कर सकते हैं और इसमें काफ़ी संभावना है।
2: हाँ हाँ देखियो मनोज जी, अपन सबके जो मिथिलांचल है में कहल गेल छे पग पग पोखर माछ मखान आ ई अछि मिथिला के शान। ए तो जगह जगह पोखर जलकर सब जे होइ छे से भरल अछि, ओहि में माछक व्यवसाय केना नीक जका हेतै ओहि के संबंध में अहाँ की कहऽ चाहै छी?
3: मछली पालन में एक एकीकृत कृषि एक प्रणाली होती है जिसमें किसान भाई मछली पालन के साथ साथ अन्य खेती भी कर सकते हैं, जैसे कि धान के साथ मछली पालन, मुर्गी के साथ मछली पालन, सुअर के साथ मछली पालन, मवेशी के साथ मछली पालन, बतख के साथ मछली पालन कर सकते हैं। अच्छा। ये सारी खेतियों को एक साथ करके वो अपनी अतिरिक्त आय

0: एक जुटा सकते हैं,
1: हाँ
0: जिसमें हम आपको बताएंगे कि धान के साथ मछली पालन अगर करना चाहते हैं तो क्या-क्या सावधानियां हमें रखनी हैं, क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है।
1: अच्छा
0: तो धान के साथ मछली पालन करना एक इसलिए भी जरूरी है कि किसानों की अतिरिक्त आय इससे मिल जाती है,
1: निश्चित रूप से।
0: और इसमें हमें धान की खेत में जैसे पेस्टिसाइड डालना पड़ते हैं, उर्वरक डालना पड़ते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: तो उनकी भी जो जरूरत
1: लागत
0: है,
1: जले हुए
0: लागत है,
1: जो
0: वो
1: कम
0: कम
1: रूप
0: हो
1: से।
0: जाती है, क्योंकि मछली का जो मलमूत्र निकलता है वो भी एक उर्वरक का ही काम
1: अच्छा वो
0: करता
1: खाद का
0: है,
1: काज
0: खाद
1: करते
0: का
1: हैं।
0: काम करता है जी। धान का खेत में पानी आपको रखना पड़ेगा, लगभग 2 फीट पानी कम से कम रखना पड़ेगा, जिससे कि मछली उसमें जिंदा रह
1: हाँ
0: सकें।
1: हाँ
0: और इसके लिए धान की कुछ विशेष किस्में हम यूज करते हैं, जैसे कि जयसूर्या है, जलमग्न है,
1: अच्छा
0: जलांधी है, मनोहरशाली, AR1, IB1, IB2, ये कुछ प्रजातियां हैं धान की जो कि पानी में रह सकती हैं।
1: अच्छा
0: इस प्रणाली के लिए मछली की भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि तिलापिया, मांगोर, मरेल, कॉमन कार्प इत्यादि। इन मछलियों को हम धान के साथ आसानी से पाल सकते हैं।
1: मनोज जी एक टा बात अहाँ बताओ, जे अहाँ धान के साथ मच्छक पालन के विषय में अखन कही रहल छी, तऽ अपन सबके मिथिलांचल के जे जत्ते जगह जमीन अछि जाहिमे कि धानक खेती होइ छै, तऽ जतेक जते जमीन छै जगह की मात्र जतौ कि धान के खेती भऽ रहल छै, सब जगह ई माछ के खेती संग में कयल जा सकै छै।
0: जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए धान का जो खेत है उसमें
1: हाँ हाँ
0: मेड़ का जो एरिया है वो
1: अच्छा
0: थोड़ा सा ऊंचा आपको करना पड़ेगा, कि जिसमें खेत में लगभग 2 फीट पानी
1: पानी
0: रुक
1: पानी
0: सके।
1: रह
0: जी
1: रह सके,
0: जी
1: तै दुआरे मेर कनी ऊंच रहक चाहिए,
0: जी
1: बाकी सब जगह पर कैल जा
0: बाकी
1: सके।
0: सब जगह कर सकते हैं, बस आपको धान की किस्में, आपको जो धान पानी में रहने योग्य
1: हाँ
0: किस्में
1: हाँ
0: हैं उनका चयन करना
1: अच्छा
0: पड़ेगा।
1: जे बेसी पानी मंगे छे ओ धान
0: जी
1: के
0: जी
1: लगेबा आवश्यकता छे।
0: जी
1: आ एकर संग संग अहाँ कहलिए धान के संग संग और किछ किछ नाम जे लेलिए ओ की सब छे।
0: मछली के साथ मुर्गी पालन भी किया जा सकता है। इसमें जो मछली का तालाब है उसमें तालाब के ऊपर ही हम एक मुर्गी का जो बाड़ा बोलते हैं
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: व्यवस्था बना सकते हैं, और उसमें 2 प्रकार के सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो लिटर सिस्टम रहता है, जिसमें कि मुर्गी का जो बाड़ा है उसमें भूसा का एक लिटर बिछा दिया जाता है बिस्तर के जैसा, और उस पर मुर्गियों को रखा जाता है, और मुर्गी अपना मलमूत्र उस पर छोड़ती हैं, खाना भी उस पर छोड़ती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: तो उसको हम तालाब में डाल सकते हैं, वो खाद का काम करता है।
1: अच्छा
0: दूसरा व्यवस्था रहता है कि डायरेक्ट हम जो फर्श जैसा बना देते हैं कि जो भी मुर्गियों का वेस्टेज निकलता है वो सीधा तालाब में जाए, और उसको मछलियाँ अपने भोजन के रूप में उपयोग करें, और इससे मछलियों को अतिरिक्त भोजन कम देना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें 2 उपज भी मिलेंगी, मुर्गी भी मिलेगा साथ में मछली भी मिलेगा।
1: मुर्गी के जते निकृष्ट चीज होइ छै ओ धान के लेल कि माछा के लेल खादक काज करै
0: जी
1: छै कि
0: जी
1: नहि। अच्छा आ एकर संग संग एकटा और बातक जानकारी दिए, जे एखन माछक व्यवसाय केना नीक होतै एहि सम्बन्ध में अपने से जानकारी भेट रहल अछि, तऽ माछ के जीरा जे होइ छै जे कि ओहन कोन जगह से लेल जाए जे प्रमाणित जगह होइ जतऽ कि स्वस्थ आ शोधक माछ भेटा, जाहिमे रोग व्याधि कम लागैत होइ, ओहिमे परेशानी कम होइ, खर्च लगैत होइ, ओ केहन जगह से लेबाक चाही।
0: देखिए, मछली का जो जीरा है वैसे तो हर जिले में उसका हैचरी बना हुआ है,
1: हाँ हाँ
0: सरकार का भी हैचरी बना हुआ है, वहाँ से भी किसान भाई ले सकते हैं, और वहाँ पर हमारी जो भारतीय कार्प मछलियाँ हैं उनका जीरा उपलब्ध होता है।
1: अच्छा
0: लेकिन अभी जो मछली पालन व्यवसाय है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, नई
1: निश
0: नई किस्में मछली की किस्में इसमें आ गई हैं,
1: अच्छा
0: तो जो जल्दी बढ़ने वाली, किसान चाहता है कि उनको जल्दी बढ़ने
1: जल्दी।
0: वाली
1: हाँ
0: किस्में
1: हाँ
0: चाहिए, तो ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि तिलापिया है, पंगेसियस है, ये मछलियां काफ़ी जल्दी बढ़ जाती हैं, और इनका जो बीज है वो बिहार राज्य में थोड़ा कम हैचरी है इसका, इनका बीज जो है बंगाल में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उड़ीसा में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कुछ जयंती रोहू एक मछली की वैरायटी है जो नई वैरायटी आई है, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट इसका है,
1: अच्छा
0: और इस मछली का जो बच्चा है वो आपको भुवनेश्वर से मिलेगा, वहाँ से एक प्रमाणित सीड आप ले सकते हैं
1: अच्छा
0: इसका।
1: अच्छा तो ई अहाँ के प्रमाणित जगह से लेबा के विषय में बतेलहुँ। आ एकटा बात सबसे मुख्य बात अभी छै, जे हमसब तऽ जतेक जलकर अइ ओहिमे देखै छियै जे जीरा दै छथिन, मुदा जलकर पहिले कोन रूप से व्यवस्थित होबक चाही जाहिसँ कि जीरा देला के बाद स्वस्थ आ मतलब कि स्वच्छ माछक पालन भऽ सकै।

0: ओहिमे बेसी ग्रोथ भऽ सकै, वृद्धि भऽ सकै, ताहि लेल जलकरके कोन रूपसँ व्यवस्था करबाक चाही या देखरेख रहबाक चाही?
1: जीरा डालने के लिए, जीरा डालने से पहले किसान भाई को तालाब की तैयारी करना जरूरी है और उसमें संतुलित आहार देना जरूरी है जिससे कि उसकी उपज अच्छी हो। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें तालाब प्रबंधन करना पड़ता है कि किसान भाइयों के पास दो प्रकार के तालाब हो सकते हैं, एक तो जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है साल भर, और एक तालाब ऐसे हैं जिसमें 4-5 महीने तक पानी रहता है। तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं जीरा उत्पादन के लिए।
0: अच्छा,
1: कुछ तालाब ऐसे हैं कि जिसमें साल भर पानी है तो उसमें कई प्रकार के खरपतवार आ जाते हैं, कई प्रकार की मांसाहारी मछलियां आ जाती हैं जो कि जीरा के लिए काफ़ी हानिकारक हैं।
0: अच्छा।
1: तो हमें सबसे पहले इनकी सफाई करना पड़ता है, उस तालाब से जितने भी खरपतवार हैं उनको निकालना है और जितनी भी मांसाहारी मछलियाँ हैं उनको निकालना है। तो ये जो मांसाहारी मछलियों को निकालने के लिए हम महुआ की खली का उपयोग कर सकते हैं। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के डोज के हिसाब से इसको डालेंगे तो सारी जो भी मांसाहारी मछलियां हैं वो सारी मर जाएंगी।
0: अच्छा,
1: दूसरा, इसमें चूना भी हमें डालना पड़ता है। चूना से पानी का पीएच मेंटेन होता है और ये मछलियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सो इसमें 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूना हमें डालना पड़ता है। तीसरा, हमें खाद भी डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो मछली का जीरा बहुत छोटा साइज का
0: हाँ
1: होता
0: हाँ
1: है, इसको हम मार्केट वाला अगर दाना देते हैं तो वो उसके मुंह का साइज में नहीं
0: नहीं
1: आ
0: आए
1: पा
0: सके
1: सकता है।
0: तेज।
1: तो इसलिए उसको प्राकृतिक भोजन चाहिए जो कि तालाब में खुद डेवलप हो। तो
0: अच्छा,
1: उस प्राकृतिक भोजन को बनाने के लिए हमें तालाब में कुछ खाद डालना पड़ती हैं,
0: जी हाँ,
1: तो जिसके लिए हम 750 kg महुआ की खली या सरसों की खली और 200 kg गोबर और 50 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये तीनों का मिश्रण बना के हम
0: अच्छा,
1: उस तालाब में उपयोग कर सकते हैं। और इस 1000 किलो जो मिश्रण बनेगा इसका लगभग 30% हम पहले एक साथ
0: एक
1: डाल
0: साथ
1: देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ डोज है उसको
0: बारी बारी से
1: बारी बारी
0: डालते
1: से
0: रहे।
1: हम डालते रहेंगे। तो ये
0: अच्छा,
1: तैयारियां हमें जीरा डालने के पहले
0: पहले
1: करना
0: करबाक
1: पड़ती
0: चाही।
1: हैं।
0: जीरा डाला सँ पहिने तो बुझि गेलियै जे ई तैयारी होबाक चाही, आ जहन ई तैयारी भेलाके बाद माछके जीरा ओहिमे दऽ दै छियै तऽ ओकर वृद्धिके लेल, माछक वृद्धिके लेल आ माछ स्वस्थ रहै ताहि लेल की सब करबाक चाही?
1: जीरा डालने के बाद सबसे पहले तो भोजन प्रबंधन करना पड़ता है कि मछली का जो जीरा है वो उसको अगर सही तरीके से न्यूट्रिएंट मिले, सही
0: हाँ
1: तरीके से
0: हाँ
1: भोजन मिले तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है।
0: निश्चित रूप
1: तो
0: से।
1: भोजन के लिए हम आहार के रूप में जैसे चावल की भूसी है, सरसों की कली है, गेहूं का चोकर है, इनको मिला के हम उपयोग कर सकते हैं। जीरा जैसे ही तालाब में डालते हैं तो जो पहले सप्ताह में हम 1 लाख जीरा के लिए लगभग 500 से 600 ग्राम खाना देते हैं,
0: अच्छा
1: फिर अगले सप्ताह से वही खाना दुगना कर देते हैं हम
0: अच्छा
1: लोग, लगभग 1200 ग्राम
0: धीरे
1: प्रति
0: धीरे ओकरा
1: लाख
0: बढ़ाबै छियै
1: जी।
0: अहाँ सब?
1: और ये जो जीरा पालन है लगभग 15 से 20 दिन का होता है, इसके बाद वो आधा उंगली के साइज का आ जाता है जिसको हम फ्राई बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: उसके बाद इसको दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देते हैं।
0: बहुत नीक गपक जानकारी देले। एक और गप के जानकारी दिया जे माछक व्यवसाय के लेल जे किछु योजना छै ओ कनिक संक्षेप में बता दी।
1: मछली पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काफ़ी लाभकारी अभी हो रही है
0: अच्छा,
1: और इसके माध्यम से किसान भाई, आप कोई भी मछली का जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं वो इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% अनुदान मिलता है और SC ST के जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनको 60% अनुदान इस पे मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी रहती है जिसको हम DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो भी आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करके आपको अपना जो मछली पालन का ऑफिस है
0: जी हाँ,
1: वहाँ पर देना पड़ेगा और उस योजना का हम लाभ ले सकते हैं। इसमें हर योजना के लिए इसमें लाभ है।
0: अच्छा, देखियौ बहुत नीक गपक जानकारी देलियै जे एहिके माध्यमसँ माछ जे व्यवसाय करयवला छथि हुनका बहुत लाभ भेट सकै छनि। आ एकटा चलत चलत गपक आओर जानकारी दिअ जे स्वरोजगारके रूपमे आइकाल्हि ई सब चीज बहुत बेसी देखल जा रहल छै, तऽ केओ जे माछक व्यवसाय कि सब गोटे सब वर्गक लोक स्वरोजगारमे जुड़ि गेल छथि तऽ हुनका लेल अहाँ की सन्देश देबाक चाहब?

0: एकटा माछक व्यवसाय के रूप में अहाँ की अपन संदेश देवा चाहबन?
1: मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है और इसमें युवा, मछुआरे या किसान सभी लोग इसको कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और इसके लिए सरकार भी काफ़ी योजनाएं चला रही है, तो आपको जो है पैसे की ज़रूरत है मछली पालन व्यवसाय के लिए, तो वो सारी फंडिंग जो है सरकार से आपको मिल जाएगी। और इसके लिए प्रशिक्षण की जो ज़रूरत है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में इसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग्स भी होती
0: हाँ
1: हैं, तो
0: हाँ
1: वहाँ पर आके किसान भाई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं।
0: बहुत नीक गप के जानकारी देलिए। देखियौ, माछक व्यवसाय केना बेसी नीक हुए, मनोज कुमार जी अहाँ बहुत नीक गपक जानकारी देलिए। दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में अहाँ के एहि के संग संग बहुत बेसी धन्यवाद।
2: हाँ मीर भाई, अखन हमारा लोकन एकीकृत मत्स्य पालन पर ई हमारा लोकन ई वार्ता सुनल छलो। भेंटवार्ताकार छला डॉक्टर मनोज कुमार आ हिनका से गप कर रहल छली रंजना झा। दुनू गोटे के बीच भेल गप सब खूब निक लागल। आशा करै छियनि जे हमर किसान श्रोता लोकन सेहो सुनि कऽ लाभ उठेथिन। तऽ हमरा लोकन जे छै ओनाहियो एकटा ई बहुत नीक व्यवसाय अछि आ माछ तऽ बुझिते छियै कि स्वास्थ्यक लेल कते नीक मानल गेल अछि। तऽ फेर मेहर भाई बेर रहत फेर अहाँ गपशप करब, मुदा आगे की विचार
3: रमन चमन एकटा सुनबाक
2: चाही। हाँ, तऽ किएक नहि हमरा लोकनि सुनि एकटा ई लोकगीत
3: किसान भाई लोकनिके सुना दियनि।

0: मीर भाई अखन हमारा लोकन जो है नंद शंकर झा के स्वर में हमारा लोकन लोकगीत सुन छलो खूब निक लागल। अब कार्यक्रम के आगा बढ़बत जे किछ मौसम संबंधी सोचना है वो हमारे किसान श्रोता लोकन के बता दल जाओ।
1: देखियो देबू भाई, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से प्रमाणित अवधि के दौरान उत्तरी बिहार में अनेक जिला में गरज वाला बादल के संभावना बनल है। एक चलत कई स्थान पर हल्लुक वर्षा होय के सेहो संभावना छे। आ वर्षा के समय देबू भाई तेज हवा चले के सेहो संभावना छे। आ ए अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान सेहो अछि। आ न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रही के संभावना अछि। ओतहि सापेक्ष आर्द्रता के गप करब तो भोर में 70 से 75% आ दुपहरिया में 25 से 30% रहे के संभावना सेहो छै। प्रमाणित अवधि में औसतन 24 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वावसा चले के सेहो संभावना छै। देखियो देबू भाई, किसान लोकन के समसामयिक सुझाव सेहो देल जाय छै।
0: हां हां, त अखन जो समय जो छै हमरा लोकन गरमा जोत कली खेत के संग संग जो छै गरमा तिमंतर के माने खरीफ वाला तिमन तरकारी सेहो लगाबी। और जो एहि तरह हमरा लोकन तिमन तरकारी आ देख रेख करत रहब त नीक उपजा बारी हैत। आब एकरे संग देखू मिहिर भाई, जे समय के जो छै सेहो कह रहल अछि हमरा लोकन के चलबा के जे छै सेहो अनुमति दऽ रहल अछि। त चलत त नमस्कार मिहिर भाई।
1: नमस्कार देबू भाई।

अभी आप सुन रही थी खेती गृहस्थी और गांव घर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से कुछ एक पल में।

0: कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: Saving करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na,
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला

0: अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री चौधरी ने पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवसायियों को भरोसा दिया कि सुरक्षा और सुविधा के मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
1: मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार के तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो पूरा गैप है इसको बदलने का समय है। बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुले, बिहार समृद्ध हो, देश विकसित होगा तभी जब बिहार समृद्ध होगा।
0: मुख्यमंत्री ने उद्योग संघों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं समझी और उनके निदान का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मंत्री

0: मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण उत्पन्न संकट से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार इस पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
1: पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे, जो दुनिया के हालात हैं, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, दाम में जो बढ़ोतरी का दर है वो भी समझिए कई देशों की तुलना में यहाँ पे नियंत्रित रखा गया है कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके तहत हम लोग काम करके खपत को कम करें और खाड़ी युद्ध का जो प्रभाव आ रहा है उसका हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विभिन्न भागों में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को संगठन के विचार, व्यवस्था और संपर्क माध्यमों से परिचित कराया जा रहा है। रोहतास में आयोजित महाअभियान में आज राज्य के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, विकसित राष्ट्र बनाकर भारत को परम वैभव पर पहुंचाना और इस लक्ष्य को पूरा करने में पूरे देश के असंख्य कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य के पीछे हम सभी लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं।
0: नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट सिटी पर काम शुरू कर दिया गया है। श्री मिश्रा शेखपुरा जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला कार्य योजना तैयार कर रहा है।
3: भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी कड़ी में पूरे देश स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है और न सिर्फ शेखपुरा में बल्कि पूरे देश स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो मंडल स्तर से जिले स्तर तक भी, जिसमें कार्यकर्ताओं के बेहतरी के लिए उस पर आधारित ये प्रशिक्षण है।
0: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान परिषद के आगामी चुनाव में सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पटना में पार्टी की आज हुई बैठक में सारण से विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि महागठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त उम्मीदवार दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों के लिए आज आईआईटी पटना में स्वागत सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: आईआईटी पटना के सीनेट हॉल में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के युवा शामिल हुए। पंजाब से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और उन्हें बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से अवगत कराया गया। डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं से देश की विविध संस्कृति को समझने, आपसी संवाद बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद भी किया।
5: मैं आईआईटी खड़गपुर से 1986 में पास आउट किया था, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैं जॉब किया एलएनटी में एक साल, फिर आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया, फिर मैं पब्लिक सेक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बॉम्बे ज्वाइन किया, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस दिया, दिल्ली आया, यूपीएससी लिखा 90 में और फिर आपके सामने पुलिस में आ गया।
4: आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि पंजाब से आए छात्रों को राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
6: उन जगहों पे ले जाएंगे जिस

0: के कारण बिहार ज्यादा जाता है, जैसे वैशाली है, बोध गया है, ये है नालंदा है, वैशाली का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा यहाँ के संस्कृति को समझने के लिए, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ के व्यवसाय को समझने के लिए और यहाँ के व्यक्तियों की मानसिकता को समझने का भी पूरा प्रयास रहेगा।
1: कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मेहता समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। युवा संगम कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल को समझने का अवसर प्रदान करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
2: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को डोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में लू चलने की संभावना जताई है।
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना समेत प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजन किया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 से 4:30 तक चली। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और इससे संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थाओं में आवेदन दे सकते हैं तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की

एसटीएफ टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरपुर गांव में संयुक्त कार्रवाई कर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, भारी संख्या में कारतूस, 4.5 लाख रुपए नकद समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में एक युवती से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मद्य निषेध कानून और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले की बरबीघा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी पिस्तौल और 3 संदिग्ध मोबाइल बरामद की गई है। दोनों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरी सराय कबीरपुर पथ पर गश्ती के दौरान एक साइबर ठग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल जिले के बीरपुर में सशस्त्र सीमा बल द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिल रैली निकाली गई। वाहिनी मुख्यालय बीरपुर से सीमा चौकी कटैया तक आयोजित रैली का उद्देश्य सीमा क्षेत्र के लोगों और जवानों के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में छात्र, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से की जाएगी लागू। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
0: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
0: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: एक जमाने से कहा

0: एक्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
3: जिले का 46वां स्थापना

0: दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जिले के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा से अवगत कराया। जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि मधेपुरा ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और अब विकास के गति को और तेज करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी और साहित्यकार डॉक्टर बी एन मधेपुरी की पुस्तक मधेपुरा जिला का इतिहास का वितरण किया गया। वहीं जिले के घैलाड़ क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले 100 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मधेपुरा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य 18,82,000 के मुकाबले करीब 10,72,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजीत कुमार मिश्र के अनुसार सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और वसुधा केंद्रों पर लगातार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले के 12 सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है, जहां गंभीर बीमारियों का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मधेपुरा जिले में कैंसर पीड़ितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना के IGIMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने मधेपुरा में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। IGIMS के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष प्रदेश में कैंसर के लगभग 78,000 मामले संस्थान में पहुंचे, जिनमें अकेले मधेपुरा जिले के करीब 2,750 मरीज शामिल थे। यह संख्या राज्य औसत से लगभग 700 अधिक बताई गई। डॉक्टर मंडल के अनुसार जिले का भूजल प्रदूषण इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। पानी में नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा और रासायनिक प्रभाव के कारण पेट, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत और मलद्वार से जुड़े कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने की अपील भी की है। जिले में प्रशासनिक स्तर पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों में विशेष शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 38 चिन्हित शिविरों में आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड और राशन कार्ड जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण और पौधरोपण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। शिविर का आयोजन कल तक होगा। मधेपुरा में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से फार्मर रजिस्ट्री अभियान चला रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत किसान अपने भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री ID बनवा सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुँचाना है। जिले में पासपोर्ट सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 26 मई तक विशेष मोबाइल वैन शिविर लगाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर के जरिए नागरिक अपने घर के नजदीक पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इच्छुक लोग पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर स्लॉट बुक कर आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी में आयोजित ऐसे शिविर में 165 आवेदनों का निष्पादन किया गया था। मधेपुरा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिन लाभार्थियों ने अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें 30 मई तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंचायत भवनों में शिविर लगाए गए हैं और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय पर प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन बंद हो सकती है। जिले के सिंहेश्वर से मानिकपुर तक बनने वाली बाईपास सड़क को विभागीय स्वीकृति मिल गई है। फिलहाल इसका DPR तैयार किया जा रहा है। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से मधेपुरा और सिंहेश्वर शहर में जाम की समस्या कम होगी तथा आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। 9 मई को मधेपुरा जिले के व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां आपसी सहमति के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 19 मई को जिले की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री शीला मंडल और प्रभारी सचिव राहुल कुमार ने सहयोग शिविर में उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।

0: नरे बाबा।
1: बच के रहना रे बाबा। अभी आप सुन रही थी इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और सौम्या राव की आवाजों में। अगला गाना उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याज्ञिक और जसपिंदर नेरूला की आवाजों में। फिल्म का नाम है चल मेरे भाई। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

अभी आप सुन रहे थे दाग फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और जसपिंदर नरोला की आवाजों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार राजेश रोशन। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में भी हमने आपके लिए बहुत कुछ लाया है। हम सुनेंगे ज्ञान की बातें खेल जगत से, हम चहल पहल की ओर ले चलेंगे और सुनेंगे एक भेंट वार्ता, साथ ही खेलों की साप्ताहिक गतिविधि की ओर भी हम चलेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत इस भेंट वार्ता से करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने दरभंगा जिला के खेल पदाधिकारी श्री परिमल से बातचीत किया है। बातचीत का विषय है दरभंगा जिले में खेल से संबंधित गतिविधियां और खेल से संबंधित हमारी उपलब्धियां। श्रोताओं नमस्कार। दरभंगा जिले के जो खेल की गतिविधियां हैं वो विगत दिनों किस तरह का रहा, कौन कौन सी उपलब्धियां हमारी रही खेल के मायने में, और विभिन्न वर्गों में जो छात्र छात्रा हैं यहाँ के, जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, वो अलग अलग खेलों में जो प्रदर्शन रहा वो या तो जिला स्तरीय हो या राज्य स्तरीय हो या फिर उससे ऊपर, इन सभी बातों को लेकर के हम आज बातचीत कर रहे हैं अपने इस दरभंगा जिले के जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल जी से। आकाशवाणी की ओर से हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। और इस क्रम में हम सबसे पहला सवाल ये कि दरभंगा जिले की जो खेल की जो विगत दिनों जो गतिविधियां रही हैं, इन सभी बातों पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
2: बिहार सरकार खेल विभाग की ओर से खेल और खिलाड़ी दोनों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कि उनकी यह सोच है कि आने वाला 2032 और 2036 में जो ओलंपिक

0: उस ओलंपिक में हमारे बिहार के खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर बिहार सरकार चली गांव की ओर। गांव की ओर चलने का उद्देश्य है कि अभी प्रत्येक पंचायत में एक एक खेल मैदान का निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और उद्देश्य है कि वह गांव में जो छुपी हुई प्रतिभा है वहां जाकर प्रतिभा खोज करके टैलेंट सर्च अभियान चल रही है। उस प्रतिभा खोज के तहत जो बेहतर खिलाड़ी हैं उनको बिहार सरकार अपने खर्च पे भारतवर्ष के जो सबसे बेहतर प्रशिक्षण संस्थान हैं उन संस्थान में उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाए ताकि हम 32 और 36 के ओलंपिक का लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए एक मसाल कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया जो प्रत्येक विद्यालय में संपन्न करा ली गई। ठीक उसके ऊपर बीआरसी स्तर पर प्रतियोगिता हुई और उसको संपन्न कराया गया है। प्रखंड स्तर प्रतियोगिता को संपन्न करा ली गई है। जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बाकी है जो इस महीने के अंतिम सप्ताह में करा ली जाएगी और उस प्रतियोगिता में जो अव्वल प्रतिभागी होंगे उनका चयन करके और उन सभी प्रतिभाओं में उन्हें अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाएगा और बेहतर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। साथ ही साथ जिले में बहुत सारी कार्यक्रम चलाई जा रही है, जैसे प्रत्येक प्रखंड में एक एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षकों की भी बहाली की जाएगी और सुबह शाम जो निरंतर गांव के बच्चे अभ्यास करते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण अभ्यास करने का अवसर प्रदान होगा। जिला मुख्यालय में आउटडोर और इंडोर खेल मैदान की व्यवस्था है। इंडोर में प्रत्येक जिले में एक एक खेल भवन का निर्माण कराया गया है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे जिम की इक्विपमेंट्स लगाई गई है। वहीं फर्स्ट फ्लोर पे जो इंडोर हॉल है उसमें मार्शल आर्ट की सभी सुविधाएं जैसे बुशु है, कराटे है, थांगटा है, तलवारबाजी है, कबड्डी है, इंडोर जो भी गेम होता है उसके लिए मैट, सिंथेटिक मैट उपलब्ध करा दी गई है। प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था करा दी गई है। सुरक्षा और सफाई की भी व्यवस्था सरकार की ओर से बेहतर कर दिया गया है। तीसरा मंजिल व तीन फ्लोर का जो खेल भवन का स्ट्रक्चर है उसमें तीसरे फ्लोर पर योगा का और कुश्ती का मैट लगा हुआ है। साथ ही साथ खेल के विकास के लिए कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के लिए एक हॉल बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल, और उसी के ठीक बगल में जिला खेल पदाधिकारी का एक कार्यालय बनाया गया है। तो मैं देख रहा हूं कि गांव के स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रमंडल स्तर पर सभी 9 प्रमंडल में बिहार के 20-20 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है और खेल गांव बनाने का उद्देश्य है, जिसके लिए दरभंगा जिला के भी हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत पटोरी के खेल मैदान को चिन्हित किया गया है और आने वाले दिन में दरभंगा प्रमंडल स्तरीय जो खेल गांव का निर्माण होगा वो हम दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और जो बिहार का संकल्प है, बिहार सरकार खेल विभाग का जो संकल्प है कि हम आने वाले दिन में 32 और 36 में जो ओलंपिक में हमारा बिहार का प्रतिनिधित्व करे, ये सपना तभी साकार होगा। धन्यवाद।
1: एक प्रश्न था कि विगत दिनों जो हमारे जिले में, दरभंगा जिले में पिछले कुछ महीनों में जो अन्य अन्य खेलों की जो गतिविधियां हुई है जिला स्तरीय, हम उसके बारे में जानना चाहिए।
0: दरभंगा जिला में विगत दिनों में कबड्डी की सभी आयु वर्ग अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 तीनों आयु वर्ग की बालिकाओं की प्रतियोगिता राज्य स्तरीय पर करवाया गया। वहीं तीनों आयु वर्ग अंडर 14, 17, 19 के बालिका वर्ग का हैंडबॉल का प्रतियोगिता

0: प्रतियोगिता करवाया गया। साथ ही साथ अंडर 14 बालक के खो खो प्रतियोगिता राज्य स्तरीय दरभंगा में संपन्न कराई गई और मशाल प्रतियोगिता जो ब्लॉक स्तर पर अभी संपन्न कराई गई है उसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, साइकिल रेस की विधाएं संपन्न कराई गई है।
1: अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने राज्य स्तर हो या देश स्तर हो, तो उन्होंने विभिन्न खेलों में अपनी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हो, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दें ताकि जो हमारे और युवा हैं, जो नए नए खिलाड़ी हैं, वो भी उत्साहित हों।
0: खास तौर पर जैसा सब लोग आज बेटियों पर गुमान कर रहे हैं, दरभंगा में कई ऐसी प्रतिभावान बेटी है जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। जैसे स्वाति मिश्रा है जो खो खो प्रतियोगिता में दरभंगा जिला में अपने आप में एक मिसाल है, और वहीं कई ऐसी बच्चियां हैं जो जैसे प्रतिभा का एथलेटिक्स में 200 मीटर हो या 400 मीटर का हो, राज्य स्तर में कई बार गोल्ड मेडल ले चुकी है। साथ ही साथ दो तीन और उभरता हुआ हमारा एक पूरी टीम वॉलीबॉल की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अभी हमारे खेल कार्यालय में ही उसका ये लगा हुआ है, मेडल जीतकर बिहार स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर पूरी टीम बालिका का वॉलीबॉल में दो आयु वर्ग में अंडर 19 और अंडर 17 दोनों आयु वर्ग में मिहिर झा एक प्रशिक्षक हैं जिनके देखरेख में एक वॉलीबॉल का क्लब चलता है, और उनकी परिश्रम, मेहनत, लगन के चलते दरभंगा जिला में खेल में वॉलीबॉल की बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन की है पूरी टीम।
1: ब्लॉक लेवल पर भी कोई ऑफिस है कि वो लोग जाकर के खेल के लिए संपर्क करें?
0: नहीं, ब्लॉक स्तर पर खेल का कोई कार्यालय नहीं है। ब्लॉक स्तर पर आउटडोर स्टेडियम है जिसमें चेंजिंग रूम है, कार्यालय के लिए भवन बना हुआ है, और वहीं सभी संघ के लोग, सभी प्रशिक्षक आकर बैठेंगे और वहां शेष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे निरंतर।
1: तो ये तो जो हमारे जिले के जो खिलाड़ी हैं उनकी उपलब्धियां आपने गिनाई हैं। बिहार सरकार या केंद्र सरकार की ओर से खेल के कोटे से भी नौकरियां मिल रही हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं।
0: खेल कोटे से बहाली क्लर्कियल जॉब के लिए दरभंगा में खास तौर पर कम से कम 5 ऐसे हैं खेल कोटे से बहाल जो अपना कहीं न कहीं योगदान दे रहे हैं। जैसे खेल कार्यालय में भी संजीव कुमार थे, बूसू के खेल से आपके अनुमंडल में हैं, वहीं कई ब्लॉक में और जिला में कई खेल विधा साइकिलिंग से हैं, स्विमिंग से हैं। जिला में सामान्य शाखा में श्याम कुमार झा जो खेल कोटा से ही स्क्वाश खेल से हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी नौकरी हुई है।
1: अंत में आपकी ओर से जिले वासियों को और खास करके जो खेल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश क्या होगा?
0: मैं तो खेल के विकास के लिए ही यहाँ मौजूद हूँ, और हम चाहेंगे कि जितने भी खेल संघ के लोग हैं वो जहाँ हैं वहीं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्तमान समय में है उसी के देखते हुए और शुरू कर दें कठिन परिश्रम, मेहनत, और बच्चों को प्रेरित करें कि आने वाला बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को बताएं ताकि वो प्रेरित हो और आप खेल में अपना समय दे

0: ले सके और अपना भविष्य बना सके, ताकि हम दरभंगा का नाम रोशन हो बिहार में पूरे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के।
2: और अब चलते हैं चहल पहल की ओर। टेस्ट क्रिकेट में गेंद बदलने की क्या प्रावधान है, आज हम चहल पहल के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे। भारत के इंग्लैंड दौरे पर बार बार एम्पायर्स का बॉल चेंज चर्चा में रहा। लॉर्ड्स टेस्ट में भी बार बार गेंद बदलना पड़ा क्योंकि पुरानी गेंदें जल्दी खराब हो रही थी। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में तो भारतीय टीम द्वारा 80 ओवर के बाद ली गई नई गेंद 10 ओवर बाद ही खराब हो गई थी। वहीं इसके बदले दी गई दूसरी गेंद को भी 10 ओवर बाद दोबारा बदलना पड़ा। इंग्लैंड की 112.3 ओवर की पारी में कुल 5 बार गेंदें बदली गई थीं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी रिप्लेसमेंट बॉल से नाराज दिखे। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में बॉल बदलने के नियम क्या हैं? टेस्ट में बॉल किन किन परिस्थितियों में बदली जा सकती है और बॉल को कैसे जांचते हैं? बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में 4 परिस्थितियों में मुख्यतः गेंद को बदला जा सकता है। पहला, अगर किसी शॉट से बॉल गुम हो जाए, बॉल स्टेडियम से बाहर चली जाती है। दूसरा, जब खराब हो जाए। खराब होने पर गेंद को बदला जा सकता है, जैसे गेंद की सीम कट जाए, सिलाई खुल जाए या फिर लेदर जाए। तीसरा है शेप बदल जाए, और यदि बॉल का डी शेप हो गई है तो इसे बदला जा सकता है, फिर चाहे बॉल का साइज बड़ा हो या फिर छोटा। वहीं अगर बॉल टेम्परिंग की स्थिति, या कहें कि अगर फील्ड अंपायर को लगता है कि गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो अंपायर बॉल को बदल सकता है। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि अंपायर बॉल की क्वालिटी कैसे जांचते हैं। फील्ड अंपायर मैच के दौरान बॉल को बार बार चेक करते रहते हैं। वे ओवर पूरा होने, विकेट गिरने और बॉल बाउंड्री के बाहर जाने के बाद गेंद को चेक करते हैं। बैटिंग या बॉलिंग टीम के अनुरोध या फिर अंपायर खुद से बॉल को जांच सकते हैं। गेंद के आकार यानी शेप का पता लगाने के लिए गेज टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में गेंद को रिंग से गुजारा जाता है। गेज में 2 रिंग होती हैं, दोनों के साइज ICC के मापदंड के अनुसार होते हैं। एक का साइज बड़ा और दूसरे का थोड़ा छोटा होता है। अगर गेंद एक रिंग से गुजरती है लेकिन दूसरी से नहीं, तो वह गेज टेस्ट में पास मानी जाती है। वहीं इसके उलट, गेंद दोनों रिंग से गुजर जाती है तो इसे गेज टेस्ट में फेल माना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत नई गेंद से होती है। 80 ओवर का खेल होने के बाद गेंदबाजी टीम का कप्तान नई बॉल की मांग कर सकता है। हर पारी के बाद नई गेंद यूज होगी। रिप्लेसमेंट बॉल बॉल लाइब्रेरी से लाई जाती है, जो फोर्थ अंपायर के पास रहती है। इसमें फोर्थ अंपायर पुरानी बॉल को रखती है जो पिछले टेस्ट मैचों में उपयोग में लाई जा चुकी हैं। साथ ही होस्ट एसोसिएशन भी पुरानी बॉल देते हैं। बॉल की कमी होने पर फोर्थ अंपायर दोनों टीमों से प्रैक्टिस बॉल भी मांग सकते हैं। बॉल को लाइब्रेरी में शामिल करने से पहले चौथा अंपायर हर गेंद को एक विशेष उपकरण यानी गोलाई नापने वाली रिंग से जांचता है। लाइब्रेरी में कितनी बॉल रखी जानी है यह चौथा अंपायर जरूरत के हिसाब से तय करता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड दौरे पर बॉल ज्यादा खराब हो रही हैं, तो वहां लाइब्रेरी पर रखी गई बॉल की संख्या ज्यादा होगी। एक अहम सवाल है कि क्या पहले जैसी रिप्लेसमेंट गेंद मिलना मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एकदम वैसी की वैसी गेंद मिलना संभव नहीं होता है। अक्सर अंपायर कोशिश करते हैं कि जो गेंद बदली जा रही है उसे उसी जैसी रिप्लेसमेंट गेंद मिल जाए। यह ज्यादा पुरानी भी हो सकती है और कुछ नई भी। एक 60 ओवर पुरानी गेंद किसी सूखी पिच पर पुरानी गेंद का विकल्प बन सकती है। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम के साथ यही हुआ था, जब टीम इंडिया ने इंग्लिश पारी के कुछ ही ओवर के बाद गेंद बदलने की मांग की थी। नई बॉल गेज टेस्ट में फेल हो गई और भारत को पुरानी बॉल मिल गई। कप्तान गिल और सिराज इसी बात से नाखुश थे। जैसे लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन सुबह गेंद डी शेप हो गई थी, लेकिन स्विंग कर रही थी। अगर भारत खुद बदलाव की मांग न करता तो गेंद नहीं बदलती।

अभी आप सुन रहे थे चहल पहल और इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में गेंद बदलने का क्या प्रावधान है इस विषय पर। और अब करते हैं ज्ञान की बातें खेल जगत से। श्रोताओं, आज हम बास्केटबॉल खेल के बारे में जानेंगे। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती है। बास्केटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखे जाने वाले खेलों में से एक है। गेंद को ऊपर से टोकरी के आर पार फेंक कर यानी शूटिंग अंक बनाए जाते हैं। खेल के अंत में अधिक अंकों वाली टीम जीत जाती है। गेंद को कोर्ट में उछालते हुए यानी ड्रिबलिंग करते हुए या साथियों के बीच आदान प्रदान करके आगे बढ़ाया जाता है। बाधित शारीरिक संपर्क यानी फाउल को दंडित किया जाता है और गेंद को कैसे संभाला जाए इस पर पाबंदियां हैं। समय के साथ बास्केटबॉल ने विकास करते हुए शूटिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग की आम तकनीकों के साथ साथ खिलाड़ियों की स्थिति और आक्रामक साथ ही रक्षात्मक संरचनाओं को भी शामिल किया। आमतौर पर टीम के सबसे लंबे सदस्य सेंटर या 2 फॉरवर्ड पोजीशनों में से एक पर खेलते हैं, जबकि छोटे खिलाड़ी या वे जो गेंद को संभालने में सबसे दक्ष और तेज हैं, गार्ड पोजीशन पर खेलते हैं, जहां प्रतिस्पर्धी बास्केटबॉल को सावधानी से विनियमित किया गया है। यदाकदा खेलने के लिए बास्केटबॉल के कई परिवर्तित रूपों को विकसित किया गया है। कुछ देशों में बास्केटबॉल एक लोकप्रिय दर्शक खेल भी है। खेल का नाम ही है बास्केट और बॉल, यानी बास्केट में डालने का जो एक लक्ष्य होता है उसे बॉल के माध्यम से हम पूरा करते हैं और इसी लक्ष्य को पाने का जो एक नियम है वही खेल के माध्यम से हम बास्केटबॉल खेल के बहाने खेलते हैं। बता दें कि जहां प्रतिस्पर्धी बास्केटबॉल मुख्य रूप से एक इंडोर खेल है जिसे बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, वहीं आउटडोर खेले जाने वाले कम विनियमित भिन्न रूप शहरों और ग्रामीण समूहों दोनों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। बास्केटबॉल खेल में एकमात्र आवश्यक उपकरण बास्केटबॉल और कोर्ट है, एक सपाट आयताकार सतह जिसके विपरीत छोर पर टोकरी हो, या 3-on-3 स्ट्रीट बास्केटबॉल के मामले में एक टोकरी के साथ एक आधा कोर्ट कह सकते हैं। प्रतिस्पर्धी स्तर पर और अधिक उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे घड़ियां, अंक तालिका, स्कोर बोर्ड, अल्टरनेटिंग पोजीशन, एरो और सीटी चालित स्टॉप क्लॉक सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक निर्धारित बास्केटबॉल कोर्ट 28/15 मीटर होता है। ज्ञान की बातें खेल जगत से के अंतर्गत अभी हम बास्केटबॉल खेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। श्रोताओं, आइए चर्चा करते हैं कि अगस्त में दलीप ट्रॉफी से सीजन की शुरुआत होती है। इस विषय पर भारत के अगले डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में 1788 मैच खेले जाएंगे। 23 अगस्त को दलीप ट्रॉफी की मैच से सीजन की शुरुआत हो रही है। बीसीसीआई ने पिछले गुरुवार को यह जानकारी दी है। दलीप ट्रॉफी के बाद 1 अक्टूबर से इटली कप खेला जाएगा। इसमें रणजी ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू कश्मीर की टीम रेस्ट ऑफ इंडिया से भिड़ेगी। रणजी ट्रॉफी इस बार 2 चरणों में खेली जाएगी। पहला चरण अक्टूबर नवंबर और दूसरा चरण जनवरी फरवरी 2027 में होगा। रणजी में 32 टीमों का एलीट ग्रुप और 6 टीमों का प्लेट ग्रुप रहेगा। बीच में सीनियर पुरुष T20 और वनडे यानी विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएगी। महिलाओं का घरेलू सत्र अक्टूबर नवंबर में सीनियर महिला T20 से होगा। इसके बाद ईस्ट जोन ट्रॉफी और वनडे ट्रॉफी दिसंबर से फरवरी तक खेली जाएगी। अंडर एज टूर्नामेंट नवंबर से जनवरी तक खेले जाएंगे। इस सीजन में एक नया मैच जोड़ा गया है। सीके नायडू ट्रॉफी की विजेता टीम रेस्ट ऑफ इंडिया से खेलेगी। इससे उभरते अंडर 23 खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा। पुरुष अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी और यूनिवर्सिटी लेवल पर खेली जाने वाली विजी ट्रॉफी को अब वनडे की बजाय T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। जनवरी में कुछ इलाकों के मौसम को देखते हुए अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी एलीट ग्रुप के

0: सभी मैच बेंगलुरु और मैसूर में खेले जाएंगे। अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी को नवंबर जनवरी में शिफ्ट कर दिया गया है। बात करते हैं पांच बार के चैंपियन जो तीसरी बार प्लेऑफ से बाहर हो गई है यानी चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। पांच बार की चैंपियन तीसरी बार यानी पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स लगातार तीसरे सीजन में प्लेऑफ स्टेज से बाहर हो गई है। पिछले गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए चेन्नई को 89 रन से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 13.4 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने तेज 16 रन बनाए लेकिन मोहम्मद सिराज ने उन्हें भी पेवेलियन भेज दिया। सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट झटके। मैथ्यू शॉट ने 24 रन बनाए जबकि शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 47 रन की पारी खेलकर कुछ देर मुकाबले में टीम की वापसी कराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अंशुल कंबोज ने भी 8 गेंदों में 19 रन बनाए लेकिन दूसरे बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। गुजरात की ओर से कविसो रवाडा और राशिद खान ने भी 3-3 विकेट झटके। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 53 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कप्तान शुभम गिल ने भी 37 गेंदों में 64 रन बनाए और दोनों ने पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। आखिर ओवर में जोस बटलर ने 27 गेंदों में नाबाद 57 रन ठोके। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 3 गेंदों में 7 रन बनाया। चेन्नई की ओर से मुकेश कुमार, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज को 1-1 विकेट मिला। श्रोताओं, चलते हैं खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों की ओर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के 8वें दौर में जीत हासिल करने के कुछ अच्छे मौके गवा दिए हैं और आखिर में उन्हें फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है। सिंदारो पर दूसरे दौर में जीत के बाद प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत की तलाश वाचियर लाग्रेव के खिलाफ लगभग पूरी हो गई थी। भारतीय खिलाड़ी सफेद मोड़ों से खेलते जीत की अच्छी स्थिति में पहुंच गया था। उनके पास कुछ अच्छे मौके थे लेकिन वह उन्हें नहीं भुना पाए और आखिर में टूर्नामेंट का यह सबसे लंबा मुकाबला करीब 6 घंटे और 139 चाल के बाद समाप्त हुआ। प्रज्ञानंदा अपनी अंतिम बाजी में अनीस गिरी का सामना करेंगे। वहीं दिन के अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फैबियानो कारुआना और जर्मनी के विसेंट कीमर के बीच बाजी ड्रॉ रही जबकि विश्व चैंपियन के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावखिर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नीदरलैंड के एक अन्य खिलाड़ी अनीश गिरी को रोमानिया के डिएक बोगदान डेनियल से हार का सामना करना पड़ा। लेडीज यूरोपियन टूर में अपना पहला खिताब जीतने की कवायद में लगी भारतीय गोल्फर प्रणवी उर्स ने लल्ला मीडियम कप में दूसरे दौर में 2 अंडर का स्कोर बनाकर शीर्ष 10 में अपनी जगह बरकरार रखी है। पहले दौर के बाद दूसरे स्थान पर रही प्रणवी अब 36 होल के बाद 5 अंडर 77 के कुल स्कोर के साथ 8वें स्थान पर हैं। वह शीर्ष पर चल रही केल्सी बेनेट से 8 शॉट पीछे हैं। बेनेट ने अपना स्कोर 13 अंडर यानी 68-65 कर लिया है। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन आज से शुरू हुआ। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर और 24 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता नोवाक जोकोविच को ड्रॉ के अलग अलग हाफ में रखा गया है। पुरुषों के वर्ग में सभी की निगाहें मुख्य रूप से सिनर और जोकोविच पर टिकी जिन्हें ड्रॉ में अलग अलग हाफ में रखा गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेलों की साप्ताहिक गतिविधि। इसी के साथ क्रीड़ा जगत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ एक पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है।

0: उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं।

0: जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में

0: 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को ताउन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत ताउन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्त की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाज़े के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफ़ी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तजारत के हक़ में भारत के मौक़िफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकत दारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकत दारों में से एक करार दिया।

0: उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने यह बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकत दारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवानशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तस्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ CPI-M के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर ये सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी ज़िला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज़ कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक ज़िलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकज़ों में भेजने के लिए ज़रूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीक़े कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तश्वीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान ये फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ ज़रूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

एक मुसाफिर एक हसीना। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशु भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार थे राजा मेहदी अली खां और संगीतकार ओपी नैयर। गीत फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रही थी हंसते जख्म फिल्म के गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना कैफी आजमी की थी, धुन बनाई थी मदन मोहन ने। कार्यक्रम का अगला गाना इज्जत फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रही थी लता मंगेशकर को फिल्म हीरे रांझा में। गीतकार थी कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ एक पल में।
1: वाणी है रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको बिष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
2: In the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight, we present Sitar Recital by Pandit Hara Shankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned Sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hara Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hara Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity

0: as a Jafarkhani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
1: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
0: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोर। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal, followed by madhyalaya teen tal.

0: जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी बिगिनिंग विद अलाप एंड जोर द कंपोजिशन ऑफ द राग इज सेट टू गत इन विलंबित तीन ताल फॉलोड बाय मध्य लय तीन ताल।

0: दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest